0: कैमरा रोलिंग
1: 324 शूट 3 एक्शन।
2: तो या फेजर रवेस्की प्रिमायो वेकलेग मिखाइला मकारे आइस बुक चैलेंज।
3: Bonjour, je reviens tout juste de deux journées de guidage très particulières. Moi, dans le cadre de mon service de guide, j'offre un service qui s'appelle « Je découvre ».